एंटीबॉडीज सिर्फ यह जाहिर करती हैं कि जानवर माजी में वायरस का सामना कर चुका है। स्टीफंस इस सूरत हाल को इंसानों में नज़ला जुकाम की मिसाल से वाज़ करते हैं। वो कहते हैं कि किसी शख्स के जिस्म से जिंदगी के किसी भी दिन के लिए लिए गए नमूने में वायरस नहीं भी मिलता। यही सूरत हाल जंगली जानवरों में भी हो सकती है। मजीद ये कि मुहक्किकीन बेशतर इकसाम के बारे में बहुत कम मालूमात रखते हैं। गुज़िश्ता 50 बरसों में जम्हूरिया कांगो, गबोन, सिरा लियोन, लाइबेरिया, सूडान और युगंडा जैसे ममालिक में एबोला की वबाओं ने हज़ारों अफराद की जान ले ली। इसके बावजूद मुहक्किकीन का ख्याल है कि वायरस के कुदरती जख़ीरे को तलाश करने के लिए अब तक काफ़ी तादाद में जानवरों का मुतालिया नहीं किया गया। स्टीफंस के मुताबिक अफ्रीका में पाए जाने वाले तकरीबन 900 ममालिया जानवरों में से सिर्फ 350 के करीब इकसाम के नमूने लिए गए हैं, जबकि लेबॉरेटरी में जिंदा वायरस से मुतासिर किए गए जानवरों की तादाद इससे भी कहीं कम है। इस तहकीक से साइंसदान ये समझने की कोशिश करते हैं कि वायरस जानवर के जिस्म में कहाँ छुपता है और इन्फेक्शन से कितने अरसे बाद काबिल शिनाख्त हो जाता है। स्टीफंस ने कहा कि मुमकिन है कि वायरस इन जानवरों में भी बहुत नायाब हो जिन्हें यह मुतासिर करता है। मिसाल के तौर पर जिन मुतादद इकसाम में हमने वायरस दरियाफ्त किया, इनमें बाज़ औक़ात सैकड़ों नमूनों में से सिर्फ 2 या 3 जानवरों का टेस्ट ही मुस्बत निकला। 2014 में सिरा लियोन, लाइबेरिया और गिनी में फैलने वाली और 11,000 से ज़ायद अमवात का सबब बनने वाली वबा के बारे में भी ख्याल किया जाता है कि वह जंगली जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हुई थी। पहला केस 2 साल बच्चा था जिसके बारे में ख्याल जाहिर किया गया कि उसने चमगादड़ों को छुआ होगा। दीगर वबाओं का ताल्लुक मुर्दा चिंपैंजियों और दूसरे बंदर नुमा जानवरों के गोश्त के इस्तेमाल से भी जोड़ा गया। अगरचे एबोला की तहकीक अब तक जंगली जानवरों के सिर्फ एक छोटे हिस्से तक महदूद रही है, लेकिन यह बात काबिल तवज्जो है कि कांगो के जंगलात और दीगर इलाकों से बड़ी एहतियात से जमा किए गए सैकड़ों नमूने, जिन्हें बीमारियों पर काबू और रोकथाम के अमरीकी इदारे CDC जैसी जदीद लेबॉरेटरियों में भेजा गया, लेकिन इनमें जिंदा वायरस का कोई वाज़ सुराग नहीं मिला। मुहक्किकीन का ख्याल है कि जिंदा वायरस ना मिलने की एक वजह यह हो सकती है कि इन्फेक्शन के बाद वायरस के जर्रात जानवरों की जिस्मानी बाफ्तों में छुपकर रहते हों। दबाव, खुराक की कमी या माहौलियाती तब्दीली जैसे अवामिल इन छुपे हुए जर्रात को दोबारा फाल कर देते हों। ताहम हज़ारों जंगली जानवरों से मुख्तलिफ औकात में नमूने जमा करना इंतहाई महंगा और वक्त तलब काम है। स्टीफंस के मुताबिक एबोला के कुदरती गढ़ की अभी तक शनाख्त न हो सकने की एक बड़ी वजह एहतियात की कमी भी है। माहिरीन का कहना है कि मजीद जामे फील्ड रिसर्च के बगैर फितरत में वायरस के असल ठिकाने का सुराग लगाना मुश्किल होगा। आइंदा हफ्ते तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।